हड्डी कटा छा गई, नजर मिल गई, कल खिल गई, कसब हो गया, जिया खो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया।